0: क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स।
1: तेरी सब्जी दी खुशबू और टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता। ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
5: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
6: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाना जा वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सीधे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
7: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
8: सूरज देवता
7: की मतलब?
8: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
7: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
8: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
9: जी की हाल है पिट दर्द दा?
10: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
9: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
11: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, Radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल की free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
12: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स। यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।
13: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
14: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you. At Kangan Institute, call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.

0: ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ Mustang, brand new demo ਤੇ quality pre-owned vehicles, trade-in ਅਤੇ finance options ਵੀ available। ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Ford ਦਾ test drive ਕਰੋ, business fleet ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, vehicle experts, Tim Forbes ਜਾਂ Corey ਨਾਲ। Radio ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ free service। Chadston Ford, ready, set, Ford. Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिया दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
1: 0433-280-252।
2: सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा फोर जिथे एडवोकेट ढिल्लो फिर कहेंगे
3: पर ढिल्लो ने काला कोट एवे नहीं पाया।
1: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा फोर दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
4: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
5: यार उना दा डैंडीनोंग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
4: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डैंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो 0499-2535-45 ते।
6: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
6: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
7: ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
8: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਜੂ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
7: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
9: ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383-85-7748 ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।
0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ AI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਡਿਲੇ ਇਨ ਲਾ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਸਲ ਲਾਇਰਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ। ਕਾਲ 422-905-860 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ bansallawyers.com.au।
10: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
11: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
12: की होया?
11: इत्थे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
12: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चक्को, कॉल करो VY इमीग्रेशन नु, जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
11: या 90-77-93
12: या ईमेल info@vy vyimmigration.com.au.
13: Yaad rakho 9077973.
12: Viva Immigration and Education Consultant.
13: Har kadam tuhade naal.
14: Sona chahida.
15: Parosa chahida.
14: Quality te buyback vi chahida. Chale aao. Delhi Jewelers. Stockland Point Cook Vikhe. Jithe buy carat gold, classy silver, dazzling diamonds, ate gemstones. Custom jewelry tuhade order te ready. Purana sona buyback and exchange turant. Cash chahida. Gold loan easy and safe. Repair, bullion buying, selling, sab ek hi jagah. Te OV wajib rate te. Delhi Jewelers. 310/2 Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042.

0: set go Chadston Ford Dandenong Road ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ Ford Ranger Ranger Super Duty Everest ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ Mustang brand new demo ਤੇ quality pre-owned vehicles trade in ਅਤੇ finance options ਵੀ available ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Ford ਦਾ test drive ਕਰੋ business fleet ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ vehicle experts Tim Forbes ਜਾਂ Corey ਨਾਲ radio ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ free service Chadston Ford ready set Ford. Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर House and Land Experts Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock अज ही पहुंचो Orbit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
1: 0433-280-252
2: सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा फोर जिथे एडवोकेट ढिल्लो फिर कहेंगे
3: पर ढिल्लो ने काला कोट एवं नहीं पाया
1: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा फोर दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है
4: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
5: यार उना दा डैंडीनोंग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
4: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डैंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते
6: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा
0: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू एदे बारे दसन लई
6: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492
7: ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ
8: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ
9: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
10: ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383-85-7748 ਤੇ ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ ਰੇਵਨ ਹਾਲ

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू। हाँ जी।

ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik rahe hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options be available. Aao te apni navi Ford da test drive karo, business fleet lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Corey Nal, Radio Hanji de hawale nal pao, 10 saal di free service. Chadston Ford, ready, set, Ford. Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजुर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता, ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
2: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
3: पर टिलो ने काला कोट ऐवे नहीं पाया।
1: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
0: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
5: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
6: हाँ जी रेडियो

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच।
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Haji 16748.

रेडियो हाँ जी 1674 AM मैं गौतम कपिल प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट। ईरान इजराइल ते अमरीका दे विच जंग हुंदी है। अमरीका

रेडियो हाँ जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। 30 जून 2026 मंगलवार दे दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां लेके आए हैं। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज दे नाल हाउश करदे हैं शुरुआत, ते फिर आस्ट्रेलिया ते फीफा दे विच होए उल्टफेर दे नाल जुड़ियां खबरां भी तुहाडे नाल करदे हैं सांझियां।

स्वागत है दोस्तों अज की कहानी अज के विचार दे विच। अज की जिहड़ी कहानी या विचार है ये ओशो दे एक लैक्चर्स दे विच सीगा जिहड़ा तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं। अज की गलबात उस सच ते आ जिहड़ा असीं वेखण तो डरदे हाँ, वो सच जिहड़ा साडा आ अपने आप का वह चेहरा जिहड़ा असीं अपने आप तो लुकाया हुंदा। ये गल एक कहानी नाल जुड़ती है। एक शहर दे विच एक दुकान खुलती, दुकान दे उपर लिखा सीगा कि इत्थे तुसीं अपनी मनपसंद बीवी लभ सकदे हो, जिद्दां दी पत्नी तुहानू चाहीदी है। ते उत्थे एक नौजवान मुंडा जांदा, जदों दुकान दे अंदर जांदा ते उत्थे दो दरवाजे हुंदे ने। जदों बिंदा ते बड़ी दुचित्ती दे विच आउंदा कि मैं तां एक चीज़ ले आया सी, इत्थे दो दरवाजे ने। एक दरवाजे ते लिखिया हुंदा सी जवान, दूजे दरवाजे ते लिखिया सीगा वड्डी उमर वाली। सो जिस ते लिखा हुंदा ही जवान घर वाली, उह दरवाजा खोलदा। जो दरवाजा खोलदा तो बड़ा हैरान हुंदा, अंदर तो कुछ भी नहीं, पर हाँ होर दो दरवाजे जरूर हुंदे ने। एक दरवाजे ते लिखा हुंदा बड़ी सोहनी, एक ते लिखा हुंदा बड़ी साधारण आम जी। फिर वो जिते लिखा हुंदा बड़ी सोहनी, वह दरवाज़ा खोलदा बड़े चा चा नाल। अगे फिर दो दरवाजे हुंदे ने, एक ते लिखा हुंदा चंगा खाना बनाउण वाली, एक ते लिखा हुंदा जिहनूं खाना नहीं बनाउणा आउंदा। सो उहने वी उही कीता जो तुसीं ते मैं करदे, उहने पहला दरवाज़ा खोलिया चंगा खाना बनाउण वाली पत्नी। हैरानी की हद तो उदों हुंदी है जदों अगे दो दरवाजे होर हुंदे ने। एक ते लिखा हुंदा दहेज लियाउण वाली, एक ते लिखा सी ना दहेज लियाउण वाली। चलो वह दरवाजा खोलदा जिस ते लिखा हुंदा दहेज लियाउण वाली, पर इस वारी अगे दो दरवाजे नहीं सी। इस वारी अगे सी एक शीशा जिस ते लिखा सी कि तुसी बड़े गुणा दे इच्छुक हो, उस तो पहला अपना मूँह देखो। इच्छावां जिहड़ियां नित नवें दरवाजे खलाउंदियां ने, एक इच्छा चों दूजी इच्छा निकलदी है ते नवें दरवाजे खोलण लई मजबूर करदियां। इच्छावां दे चक्कर च, नवें दरवाजे खोलण दे चक्कर च असीं अपना चेहरा वेखणा ही भुल जांदे हां। एक इच्छा चों दूजी कोई इच्छा निकली, एक दरवाज़ा खोलिया उतों कोई होर दरवाज़ा खोलिया, तो दरवाजे खोलते ही गए। फिर सपना वेख्या, हरेक दरवाज़ा खोलण तो पहला, हरेक इच्छा तो पहला, पर अखीर नूं खाली रहे। अपने आप नूं पहचाणिया जावे, जो अपने आप नूं पहचानदा उह संसार तो कुछ नहीं मंगदा, क्योंकि संसार कोल कुछ हैगा ही नहीं मंगण लई। ते जो अपने आप नूं पहचान लैंदा उहनूं उह सब मिल जांदा जो उहने मंगिया सी, जो उहने नहीं मंगिया। ते जिहड़ा मंगदा ही रहिंदा, दरवाजे खोलदा रहिंदा, इच्छा ते इच्छा रखदा ही रहिंदा, उहनूं शायद ही थोड़ा थोड़ा करके कदी कदी मिल जाता हो, बहुती बार तो मिलता भी नहीं। यह गल शीशियां दरवाजियां ते इच्छावां तक सीमित नहीं, सीमित होनी साढ़े सबर ते साढ़े संतोख ते। नहीं तो वादी उम्र दे नाल अपरचुनिटियां दा घाटा थोड़ी है,
ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸਰਜੂ। ਆਓ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚੋਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
3: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है ता एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिने सब नू हसा हसा के लोट पोट कीता।
4: कह रहे हो?
3: ओ मूवी जिदी चोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: कह रहे हो?
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिनो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो बड़ी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिलो फिर कहेंगे
6: पर टिलो ने काला कोट ऐवे नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, Radio हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford. Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
7: यार तू इतने इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
9: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: देते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने कहा था भी आप जाइए दुनिया में ढूंढने के लिए, है ना, आप हर बार आपको आइडिया दे देते हैं लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव कोई रिजल्ट नहीं आता।
1: यार करदे नहीं ना, ही
0: हम आइडिया दे सकते हैं ना आपको,
1: ये गान नहीं ना तोड़ दे कोई।
0: हमने वो पंजाबी में मतलब मरदे ने अक चबिया, हम अब जाके हम सब्जी और फलों की तरफ हो गए हैं।
1: हार के जेठ अगो भी बोलो ना, हार के जेठ ना लाइया हूं कितने लोनी है,
0: असं अमरूदा बस ही हो गया। रिचर्ड जी ने इन्ने मौके दिते भी बाहर चले जो कि घूम के आओ जाके उत्थे लभ के आओ की पता लभ जावे तुहानू उत्थे।
1: एफर्ट नहीं ना करदे,
0: एफर्ट नहीं
2: उन दसो। नहीं नहीं वो मेरे फ्रेंड के डैड ने रूबी जी को भी जाके बोला गुरुद्वारे में, तो रूबी जी ने कहा हां जी अंकल।
1: दूसरे अजकल जो टायर आने ट्यूबलैस उन्होंने वर्गे हो गए आपे घूम घूम के फिर पंचर लग ही जाऊगा आपे कि
0: लिक्विड
1: एदा थोड़ी होना आ रहे हूं आ रहे से भी सदनी पड़ी
0: अलाइनमेंट करानी पैनी है, अलाइनमेंट करानी एक तरफ ज्यादा कस जाने
2: आजकल तो टायर्स विद ग्लू आ गया है इनसाइड रेजिन की वो पंचर भी नहीं होते अब।
1: हाँ उसे दी गल कर रहे हैं कि उसे दी गल कर रहे हैं भी तुही उस टायर अर्गे हो गए भी आपे ही लग जूगा पंचर, आपे थोड़ी लग जाना हुण।
0: नहीं नहीं
2: हां जी हां जी और पकौड़े से मुझे याद आया, आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव एवर ट्राइड कमल के पत्तों का पकोड़ा बनता है,
0: पतोड़ा पतोड़ा
2: एंड बैगन का पकोड़ा एंड वो क्या बोलते हैं उसका स्टेम से भी बनता है।
0: जी जी जी जी जी बनते हैं
1: स्टैंप का तो उही हो गया ना अपना की उन्हों कहिंदे आ
2: हां लोटस बोलते हैं उसको भे भे
1: भे हां भेयां दे पकोड़े
0: बनते हैं।
2: तो हम लोग समर हॉलीडेज में वहां जाते थे ओल्ड दिल्ली मेरी दादी के घर बिकॉज इट वॉज अ कॉन्वेंट
1: जी
2: दे लिव्ड इन द कॉन्वेंट तो सब कजिन आते थे बिकॉज पूरा कॉन्वेंट हमारा होता था।
1: Okay.
2: चाहे जाके सॉकर खेलो चाहे बास्केटबॉल खेलो चाहे स्विमिंग करो जो मर्जी करना है सब मस्ती से करते थे। और अगर इफ यू आर शॉक्ड एट लिस्टिंग टू हाउ मच मोमो आई एट उस समय अगर मोमो आप बैठ के सब लेडीज बनाते थे यू कैन इमेजिन ऑल द किड्स हर फैमिली में चार से पांच बच्चे एंड कुछ भी फल आते थे वहां पेटियों के हिसाब से आते स्पेशली मैंगोज वुड कम इन पेटीज और उसको हम ठंडे पानी में फेंक देते थे एंड देन वी वुड ईट टिल वी ड्रॉप। तो वहां खाने की कमी नहीं थी क्योंकि वहां मंडी था बहुत बड़ा ओल्ड दिल्ली में सब्जी मंडी एंड ऑल काइंड ऑफ मंडीज एंड बिकॉज माय अंकल वाज अ हेडमास्टर एनीथिंग ऑन फोन कॉल वुड कम टू द हाउस तांगे में आता था हम लोग बहुत मस्ती करते थे एंड जो साउथ दिल्ली में गेम्स नहीं होते थे वो सब वहां होते थे चाहे कंचा हो चाहे गुल्ली डंडा हो चाहे पिट्ठू हो इलास्टिक यू नेम इट वी हैव प्लेड एवरी सिंगल गेम आउट देयर एंड ऑल आवर कजिन्स रेमिनिस दीज मेमोरीज सो फॉन्डली। और हमारे बच्चे कोई ये सब करने को तैयार नहीं है अब।
1: सही है
0: जी
1: हुण समा बहुत बदल गया है जी हुण वो चीजा उस तरीके दे नाल नहीं है ना असल दे विच जिहड़ा कट्ठे हो के सब थां दे उत्ते एक शब्द तुसीं नोट कर रहे होगे वो आ रहा भी अं कट्ठे होकर खेडते हाँ बेसिकली कट्ठा कट्ठ नहीं रहा वो हुण तुसीं इत्थे कई टीम गेम्स हैगियां ने तुसीं उन्हां दे विच भी जाके महसूस करदे हो कि उत्थे भी एक लैवल तक दा ही सिर्फ तुहानूं टीम वर्क मिलदा जिन्नी क लोड़ आ अदरवाइज़ वो जिहड़ा कट्ठ आ वो नहीं हैगा हर कोई कल्ला कल्ला सरवाइव कर रहा कल्ले कल्ले दा सरवाइवल बड़ा सौखा हो गया आपो अपनी थां दे उत्ते हर कोई खेडना रहना पसंद करदा
2: क्योंकि हम कजन भी इतने सारे हो जाते थे दैट वी ऑल यूज्ड टू मेक आवर ओन टीम एंड प्ले प्रॉपर गेम लाइक नो शॉर्टकट।
0: जी
1: सही
2: हां जी
1: थैंक यू रिचर्ड जी
2: ओके जी
1: सिफत करनी होंगी है तो असं सच्ची कहें कि मनदीप ने जो पकौड़े खिलाए बहुत ही टेस्टी सी सानू मिलते हैं पकौड़े ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੂਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने,
2: पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
3: सूरज देवता
2: की मतलब?
3: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हा दी सेविंग्स वध गई।
2: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
3: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
4: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।

रेडियो हाँ जी 1674 AM मैं गौतम कपिल प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट। ईरान इजराइल ते अमरीका दे विच जंग हुंदी है। अमरीका ते इजराइल एक धिर ने ते ईरान दूसरे पासे दूजे धिर है। इसे साल फरवरी च हुंदा है, तुहानू सब नू इह सब कुछ पता है। इस दे विच की कुछ नहीं पता, इह जंग क्यों कीती गई। कहा तां इह गया कि इजराइल होर परमाणु हथियार नाल बना लवे, बट इज़ इट ऑल ट्रू, कि यह सब सच हैगा असल दे विच। इस तो पहला अमरीका ते ईरान दे दरम्यान परमाणु जंगबंदी नू लैके या फिर इंज कह लिए कि यूरेनियम एनरिचमेंट नू लैके एक समझौता हो रहा सी, सिरे भी चढ़ गए असी ऑलमोस्ट। उहदी भी टाइमलाइन तुहाडे नाल सांझी करदे हां, पर इस सब दे दरम्यान फिर अचानक क्यों ऐसी लोड़ पै गई। दूसरा यह भी इस मामले दे विच सवाल पैदा हुंदा है कि जदों लड़ाई तीन जणिआं ने शुरू कीती सी तां समझौता दो जणिआं दे विच क्यों होया। यानी कि इजराइल ने सब तो पहला हमला किया, अमरीका ने तां आके साथ ही दिता सी बाद दे विच, ते फिर अमरीका बनाम ईरान लड़ाई किवें बन के रह गई। इजराइल इस मामले दे विच प्रमुख धिर सीगा, बाहर किवें हो गया समझौते तो। तीजा, यह जंग जदों भी अक्सर कित जंग लड़ी जाती है तां उहदा एक पिछोकड़ हुंदा, उहदी एक पिठभूमि हुंदी है। इस जंग की बैकग्राउंड की सी कि वाकई सिर्फ और सिर्फ इन्नी कि इजराइल हथियार बना लगे, तो ईरान हथियार बना लगे तो इजराइल बना नहीं देना चाहता, इस करके अटैक करता। ये होर भी कई कारण है, तो फिर यह भी एक वजह है इसकी, एक प्रोग्राम का एक हिस्सा यह भी ये भी गल करा कि जदों ये जंग एडिया बड़िया दो ताकतों के एक पास ईरान ते दूसरे पासे इजराइल ते अमरीका, ते इजराइल तो कदे भी पाकिस्तान दी विचोलगी मनदा ना, ते फिर इजराइल नू की इसे करके उस समझौते तो बाहर रखिया गया। पाकिस्तान ने समझौता दी विचोलगी किवें करवाई, हुण सारियां परतां जदों खुल रही ने तां उहदी इनसाइट रिपोर्ट तुहाडे तक आपां वी लैके आए हैगे। कोशिश करदे हां, उम्मीद करदे हां कि सारियां जानकारियां तुहाडे तक उदां ही दे सकीए जिद्दां जिस टाइमलाइन दे विच सारियां चीज़ां होईयां हैगियां ने। अज दे इनसाइट रिपोर्ट दे विच तुहाडे तक जिहड़ा असर पिया कि तेल महंगा होया, समान महंगा हो गया, दुनिया च महंगाई आ गई, इस दे पिछे जिम्मेदार कौन है, अमरीका या कोई होर।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: Saying something gonna get these
3: success.
2: Hold up,
4: I got you stuck off the realness. We be the infamous. You heard of us?
5: Show mercy on it.

0: शर्ता लागू।
1: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी रेडियो

0: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
1: सूरज देवता
0: की मतलब?
1: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
0: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
1: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी दा ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
1: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਅਗੇਨ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਸਵਿਚਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਭਾਈ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਮੇ ਫਲਾਈਟਸ ਪਕੜਨੀਆਂ ਤੋ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਉਂ ਹੀ ਪਕੜਨੀ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਛੋੜ ਕਰ ਤੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਕੋਨਮੀ ਸੇ ਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਰੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਨਸੇ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ?
1: ਹਾਂਜੀ।
0: ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਸਾ ਨਾਮ ਔਰ ਬੜਾ ਟਵਿਸਟਿਡ ਸਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਥੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਗਗਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ।
0: ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ। ਲੌਂਗ ਡਿਊ ਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਉਸਕੇ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੇਅਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਪਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ, ਅਗਰ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲੇਕਰ ਆ ਪਾਏ ਤੋ ਮੁਝੇ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਮੈਂ
1: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰੂਵ ਟੂ ਦੈਮ ਕਿ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਫਲਾਈ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂ ਐਸ ਮੇਂ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਬ ਫਿਊਲ ਕੋਸਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਉਸਸੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਅਭੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੈ
0: ਜੀ
1: ਵੋ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਭੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਮੈਲਬਰਨ ਸੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ
0: ਜੀ,
1: ਕਰੈਕਟ ਹੈ
0: ਜੀ।
1: ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰਸ ਮੇਂ, ਜੁਲਾਈ ਔਗਸਤ ਸਪਟੈਂਬਰ
0: ਜੀ।
1: ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈ 12,000 to 15,000 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਟੋਪ ਟੀ ਏਅਰਲਾਈਨ
0: ਜੀ।
1: ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ 2,500 ਕੀ
0: ਜੀ,
1: ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ,
0: ਕਾਫੀ
1: 8-9-10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਅਬ ਸਰ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਂ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 2 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਟੂ ਪੈਰਿਸ ਕੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 80,000 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ
0: ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਆ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ।
1: ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ 200-300, ਉਨ ਸਭ ਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ।
0: ਓਕੇ,
1: ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਜੋ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ
0: ਜੀ,
1: ਕੌਂਟਸ, ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਓਕੇ,
1: ਕੌਂਟਸ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲਾਇਰ ਕਾ, ਵੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਹੈ। ਵੋ ਥੋੜੇ ਸੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਕੌਂਟਸ ਹੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਜਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ।
0: ਵੈਲੋਸਿਟੀ
1: ਤੋ ਆਪਕੇ ਜਿਤਨੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬੋਲ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 70-80%, ਇਫ ਨੋਟ 90%, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਏਮੈਕਸ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਕੌਂਟਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਯੂਜ਼ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਫਾਸਟ ਅਰਨ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਪਸ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਹੈ ਕਿਆ
0: ਜੀ।
1: ਤੋ ਮੈਂ ਐਵਰੀਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ
0: ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼
1: ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ,
1: ਨੋਟ ਜਸਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਂ ਮੈਲਬਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੋ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਮਚ, ਉਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਉਨਕੋ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਜੈਸੇ ਬੋਲਤੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੋ ਜਾਂ ਬੜੀਆ ਹੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕੁਛ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ,
0: ਓਕੇ,
1: ਔਰ ਉਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ 50% ਫਲਾਈਟਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 50% ਆਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ 9,000 ਕੀ ਹੈ
0: ਜੀ,
1: ਜਸਟ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਤਨਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਪ ਉਹ 9,000 ਕੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹੈ ਵੋ 4.5 ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
0: ਓਕੇ,
1: ਆਈ ਗੋ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਉਸਸੇ ਵੀ ਆਗੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਸੇ ਆਪਣੇ ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं ना फ्री पॉइंट्स, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, अपने वो कैसे कमाने हैं ताकि जो ये 50% है वो चला जाए 90% तक। अगर आपके ज़्यादा हो तो एग्जाम्पल दूँ।
0: जी जी,
1: मेरा जो बेस्ट है अभी तक का एग्जाम्पल वो है मेलबर्न टू सिंगापुर विद सिंगापुर एयरलाइंस इन फर्स्ट क्लास फॉर $95। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो वहाँ पे ये एक वीडियो है, सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट क्लास मेलबर्न टू सिंगापुर 2024 में मैं गया था एंड आई यूज माई पॉइंट्स, और वो सारे जो पॉइंट्स मैंने अर्न किए थे, कमाए थे, उनकी कोई कॉस्ट नहीं थी बिकॉज दैट्स जस्ट थ्रू नॉर्मल स्पेंड। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ, देर आर वेज, तरीके हैं पॉइंट्स कमाने के बहुत फास्ट।
0: मेरा इस पर यही आ जाता बेसिकली सवाल ना, कि काफ़ी लोगों को पता होता है कि यार अगर क्वांटस पॉइंट्स हो मेरे पास तो है ना फायदा है, ये कंपनियां अपने लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ को मार्केट भी करती हैं, राइट,
1: बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
0: पर ये आ जाता है कि जब आप ये, ज़्यादातर आदमी इस वजह से डरता है यार ये ना कहने की बात नहीं है, होता ना कन इदा नहीं फड़िया इदा फड़ लिया कि बात वहीं पर आ जानी कि मेरा खर्चा थोड़ा थोड़ा करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उतना ही हो जाएगा जितने की शायद मैंने टिकट लेनी हो, है ना। तो कैसे इन, अगर एक हम केस स्टडी पकड़ लें,
1: हाँ जी,
0: अगर मैं एक ऐसी केस स्टडी ले लूं जिसमें मैं, क्योंकि मेजरली देखने वाले जो होंगे और सुनने वाले हैं हम लोग हॉलीडेज के लिए तो काफी जगहों पर 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार जाते हैं, पर इंडिया बहुत चक्कर लगता है,
1: बहुत चक्कर लगता है,
0: और यूजली फैमिलीज की फैमिलीज जाती हैं, है ना। तो एक
1: मिनिमम 4 लोग,
0: है ना। तो एक तो इस पर यह बात है कि कैसे कहते हैं हम कि ऑर्गेनिक खर्चे से हम कर सकते हैं, एक केस स्टडी अगर उस पर हो जाए, और सेकेंडली हम क्योंकि बिजनेस के बारे में या फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, दिस कैन वर्क ऑन इकोनॉमी आल्सो, राइट। समझो अगर 4 लोगों की फैमिली और अगर ऑन करना तो उस पर भी चल सकता है,
1: इकोनॉमी तो और भी इजी है।
0: हाँ, तो आप इस पर पहले, हम पहले ऑर्गेनिक कैसे होता है कि मेरा आम जो खर्चा है, ग्रोसरी का, पेट्रोल, इंश्योरेंसेस, घर की, गाड़ी की, ये सब जो पता है मेरे को ये खर्चे करने पड़ेंगे, है ना, और उसमें हम कैसे ऑल्टरेशंस लेकर आ सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हो लोगों को कि वहां से हमें पॉइंट्स आना शुरू हो जाए।
1: तो मैं नॉट ओनली आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपके व्यूअर्स की हेल्प भी करूंगा
0: जी,
1: सो दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिकली डू इट। 9 बजे सुबह वो लोग ये कर सकते हैं।
0: ओके,
1: ठीक है
0: जी,
1: इज दैट ओके?
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: सो पहला एग्जांपल है, हम लोग शॉप करते हैं एवरीडे रिवॉर्ड्स, मतलब वुलीज पे, वूलवर्थ्स पे
0: जी,
1: ठीक है। बहुत लोग जो है उनका फ्री रिवॉर्ड्स लेते हैं
0: जी,
1: उनका एक पेड रिवॉर्ड्स भी है।
0: ओके,
1: वो $7 मंथ का है।
0: Okay.
1: बहुत लोग लेते नहीं, वो कहते हैं $7 देके क्या फायदा, कुछ करना तो है नहीं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत लोग ये नहीं देखते कि वो $7 नहीं है, वो एक्चुअली फ्री है।
0: ओके,
1: अब पूछो फ्री कैसे है?
0: कैसे?
1: क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपने $70 की शॉपिंग करी 10% आपको वापस मिल जाना।
0: अच्छा, तो
1: तो फ्री हो गया,
0: तो काफी
1: और 70 से काफी ज्यादा करते हैं जिनके बच्चे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं लोग जाते हैं, और ये हम बहुत लो लेवल की बात कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो दिस इज एट द लोअर लेवल, तो आपके व्यूअर्स ये ना समझे कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी,
1: ठीक है। तो दिस इज एट द बेसिक लेवल। तो एक कोई भी एवरेज फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं उनको कोच करूँ या वो मेरे फॉलो करें इंस्टाग्राम या टिकटॉक या जो भी है, दे कैन अर्न बिटवीन 50 to 100,000 पॉइंट्स पर ईयर जस्ट फ्रॉम वूलवर्थ्स एंड कोल्स without spending more than they are already doing. Example, अब हम जिनके बच्चे हैं वो सारे मूवीज देखते हैं, किंग पिन बोलिन जाते हैं, JB Hi-Fi से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, सबके पास आजकल 13 साल की उम्र से आईफोन है, गैजेट्स हैं, एप्पल मैक है
0: जी।
1: तो अभी आप कोल्स पे जाओ या वुलीज पे जाओ, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते डील लगी होती है $20 per dollar ऑन एप्पल गिफ्ट कार्ड्स।
0: हाँ जी,
1: ठीक है,
0: 20 points per dollar
1: ऑन TCN हिम गिफ्ट कार्ड्स। अब जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, गारंटी के हाथ बोल रहा हूँ, 70% से ज्यादा या तो Uber Eats से ऑर्डर करते होंगे
0: जी,
1: या Uber Ride लेते होंगे
0: जी, बिल्कुल,
1: कम से कम 70% बोल रहा हूँ
0: जी,
1: ठीक है। अब TCN हिम है, TCM हर है, कितने कार्ड आते हैं
0: जी,
1: उनको आप Uber में कन्वर्ट कर दो।
0: ओके,
1: 5% का काम है
0: जी,
1: आपको Uber वाउचर मिलेगा, अपने वॉलेट में डाल दो Uber के ऐप में, एक्सेप्ट instead of connecting it to your bank visa or master या Amex या कोई भी कार्ड से, आप
0: सीधे Uber से
1: जाओ, कार खरीदो, बोलिस तो आप जा ही रहे हो, कोर्स तो आप जा ही रहे हो, ये कार खरीदो, टॉप अप करो, आपको 20 पॉइंट। अगर आपका साल में 5,000 भी खर्च होता है, खाने पीने पे, ऊबर से या ऊबर राइड्स पे, बहुत होगा तो बहुत ज्यादा होता है, मैं एवरेज ले रहा हूँ
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है 5,000, व्हाट्स 5,000 बाय 20,
0: 100,000, अच्छा वाह,
1: अभी हमने कोई किसी और स्ट्रेटजी की बात नहीं करी है, ठीक है, और 100,000 एवरीडे रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है पुलिस के इक्वल्स टू 50,000 क्वांटस,
0: तो आपके व्यूज शिफ्ट हो जाते हैं,
1: हाँ वो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एक वंस ऑफ है, कनेक्ट कर दो अपने आप पॉइंट जाएंगे, शॉपिंग करी आपकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले पॉइंट आपके क्वांटस के पॉइंट्स में पहुंचे होंगे, सो आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए वुलीज इज क्वांटस और कोल्स जो है वो फ्लाईबैस के माध्यम से जाता है वेलोसिटी में,
0: वेलोसिटी में
1: जी
0: ठीक है,
1: कुछ नहीं करना, शॉपिंग करनी है, स्कैन करना है और ठा करके पॉइंट्स आपके क्वांटस में आ जाएंगे, सिमिलरली कोल्स में गए फर्क इतना है, क्वांटस आ जाएंगे उसी सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो कॉल्स के थ्रू 3 दिन लगाते हैं, उनका सिस्टम अलग है,
0: आने चाहिए बस बेसिकली
1: आ जाएंगे,
0: ठीक है,
1: यू डोंट हैव टू वेट फॉर वीक्स और इयर्स, और एक और स्टैटिस्टिक, एक एवरेज ऑजी, चाहे आप इंडियन हो, ग्रीक हो, जो भी हो, साल में एक एवरेज बंदा, चाहे वो बिजनेस हो चाहे 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 100 to 200,000 पॉइंट्स कमाते हैं इफ दे नो व्हाट दे आर डूइंग और इफ दे थिंक दे नो, मतलब उनको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा कुछ आता है, मैंने आपको 5 सेकंड में एक ऐसा तरीका बता दिया जो आप 50,000 पॉइंट एक एवरेज यूजर सिर्फ एक स्ट्रेटजी से कर सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक है, आप कपड़े खरीदते हो, जैकेट शूज खरीदते हो
0: जी,
1: अब कितने गिफ्ट कार्ड्स हैं जो हर हर महीने लगे होते हैं, हर हफ्ते लगे होते हैं
0: उसी पे,
1: लोग आईफोन खरीदते हैं
0: जी,
1: लोग नया टेक खरीदते हैं, ये कैमरा लगे हुए हैं खरीदते हैं
0: जी जी जी,
1: यू कैन अर्न 10 points per dollar, नॉट 1 point per dollar, 10 points per dollar, और अगर हम बड़ा खर्चा ना भी लें, एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात कर लें, बिजनेस तो आप छोड़ दो, 1 to 5 lakh पॉइंट कोई भी नॉर्मल हाउस होल्ड कमा सकता है इजीली,
0: जो पक्के यूजुअल खर्चे हैं उनमें करते हुए,
1: उनमें अभी हम बिजनेस तक पहुंचे भी नहीं है, अभी हम बिजनेस, हालांकि मेरा जो प्रोडक्ट है सर्विस है दैट इज गेयर्ड मोर फॉर बिजनेसेस, क्योंकि साफ सी बात है उनका खर्चा ज्यादा है तो पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे और जल्दी आएंगे, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके सारे व्यूअर्स की
0: जी, ठीक,
1: टोटल व्यूअर्स जितने भी हैं, सिर्फ सिंपल चीजें करने से 1 to 5 lakh पॉइंट, अब आते हैं दूसरी बार जस्ट क्विकली 3 lakh पॉइंट ले लेते हैं, 3 lakh पॉइंट का मतलब क्या है
0: जी,
1: कमा तो लिया आपने, 3 lakh पॉइंट का मतलब है कि आप अ फैमिली ऑफ टू, हस्बैंड वाइफ और टू फ्रेंड्स और अ कपल और अ पार्टनर कैन गो टू एशिया एंड कम बैक इन बिजनेस क्लास
0: 3 lakh पॉइंट पे,
1: हाँ जी,
0: मतलब सिर्फ टैक्सेस पे 1.5 lakh की टिकट हो गई आने जाने की,
1: एवरेज 70,000 की भी हो सकती है, 80,000 की भी हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, मतलब कि सिंगापुर, बैंकॉक, वियतनाम, बाली, हांगकॉन्ग, ठीक है, एशिया में मोस्ट प्लेसेस में आप 3 to 3.5 lakh पॉइंट में आ सकते हो, अगर आपने ऑर्गेनिकली अर्न किया है, सिर्फ टैक्सेस पे करने हैं, अब टैक्सेस सुनो कितने के होते हैं, 200 to 500 के बीच में
0: जी,
1: मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो 500 लगा लो, दो बंदों के 1,000 हो गया रिटर्न, तो अगर रिटर्न 1,000 है, 1 to 2 कितना हो गया,
0: 2,000 हो गया,
1: मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रैवल एजेंट 2,000 में 2 लोगों की टिकट बिजनेस क्लास में मेलबर्न टू एशिया करता है,
0: ओके जब आई गेट योर पॉइंट है ना, जब आप ये कहते हैं कि 50,000 तो हम इसी में से ही निकाल सकते हैं सिर्फ वूलीज में से, अगर आपका 5-6 हज़ार का है ना, एक स्ट्रेटजी होगी है ना, ऊबर कैश की तरफ से भी कर सकते हैं कि अगर आप ऊबर का कार्ड कर लें तो उसमें भी कोई ना कोई है ना
1: चलते हैं सिर्फ ऊबर के,
0: ये सेट प्रेसिडेंट पक्के ही होते हैं कि ये चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम की, आज है कल वूलीज बंद कर दे, या फिर ये कुछ पक्के अदारे हैं, कोई पक्के बिजनेसेस हैं जो क्वांटस पॉइंट्स पता है कि मिलेंगे ही मिलेंगे,
1: काफ़ी टाइम से 12 साल से तो मैं कर रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से तो ये वूलीज कर ही रहे हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं
0: जी,
1: बंद करने को तो सर कल कुछ भी बंद हो सकता है राइट, कल किसने देखा, नो वन हैज़ अ क्रिस्टल बॉल
0: जी,
1: ठीक है ना, बट अभी कंसिस्टेंटली अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम ना भी लें, 3 साल से तो मैं और मेरे 300 से ऊपर बिजनेस क्लाइंट्स कर रहे हैं,
0: ओके,
1: रेगुलरली किसी का किसी ना किसी का आता है टेक्स्ट या कॉल कि मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देना है, कौन सा गिफ्ट कार्ड अभी चल रहा है, बिकॉज दे हैव नाउ रियलाइज, उनको पता लग गया है कि अब उनको सीधा कैश वूली जाके कैश नहीं देना, अब उनको अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, ठीक है, और तब करना है जब ये ऑफर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जिनके पास एम्प्लॉयज़ हैं या आप इंप्लॉयज को भूल जाओ, आप हमारे इंडियन कम्युनिटी में बर्थडे पार्टीज होती हैं
0: जी,
1: ठीक है, हम सबको कैश देते हैं, एनवेलप देते हैं, कुछ देते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड दें, अगर आप गिफ्ट कार्ड दे सकते हो, काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं उन वो 3-4 जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो वहीं से लेते हैं, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, आपका H&M हो गया, ठीक है. अब ये सारे जो रिटेलर्स हैं इनके अलग से गिफ्ट कार्ड आते हैं, जैसे TCM ही हो गया, हिम में आप 50 रिटेलर्स के पास जाके वो सेम कार्ड यूज़ कर सकते हो.
0: और ये इजीली फिजिबली मिल जाते हैं, मैंने देखा हर सुपरमार्केट में, कोल्स में और वूलीज में,
1: हर हफ्ते कृष्णा हर हफ्ते किसी ना किसी गिफ्ट कार्ड पे डील लगी होती है, एवरी वीक. इस साल अभी आज क्या हो गया, जून हो गया
0: जी,
1: सिर्फ 2 हफ्ते ऐसे आए हैं जहाँ पे 10% ऑफ था.
0: ओके.
1: उसके अलावा हर वीक 10 पॉइंट्स पर डॉलर ऑन गिफ्ट कार्ड्स.
0: Okay.
1: ये अगर आप सोचो कि 100-150 स्ट्रेटजीज हैं, ये एक बता रहा हूँ मैं अभी.
0: फिर बात ये आ जाती है, कई लोग इस पे बड़ा भाग जाते हैं. हाँ. कि यार इतना कौन सोचे, क्या करे, कोई थंब रूल हो, कोई मुझे पता हो कि एक होता ना टिप हो, एक ट्रिक हो कोई, कि मुझे पता कि इस तरह ट्रैक करना, एनीथिंग विच इज शेयरेबल ऑन योर पार्ट ऑल्सो, कि आप शेयर कर सको छोटा मोटा. मुझे पता कि ऑब्वियसली यू रन अ बिजनेस,
1: मैं आई विल डेफिनेटली हेल्प यू,
0: बुलाया आपको,
1: मैं थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर ट्रैकिंग की बात है, देखो हम वी इंडियंस, हम बहुत, वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वी पे द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स. सो इफ यू, जहाँ तक ट्रैकिंग की बात है, अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँ, आप एक स्प्रेडशीट बना लो, सिंपल स्प्रेडशीट. आजकल तो AI आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ChatGPT, क्लॉड, लोग ड्राइव करते करते अपनी ईमेल्स टाइप कर रहे हैं. आप उतना मत करो, आप ChatGPT को, और आपसे स्पीच टू टेक्स्ट आ गया, कुछ करना ही नहीं है. कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ बोलो, रिकॉर्ड करेगा, स्प्रेडशीट बन के आ जाएगी, आप जस्ट रिकॉर्ड करो. दूसरी बात आती है कि कितना फीजिबल है, इसलिए मैं बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ, बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि उनको सिर्फ एक या दो मोटी मोटी स्ट्रेटजीज अपनानी है. ये सब छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं है. ये तो मैं आई वाज ट्राइंग टू हेल्प यू फॉर लाइक ऑल द व्यूअर्स, बट जो बिजनेसेस हैं, अगर वो सिर्फ अपना बिजनेस स्पेंड रीडायरेक्ट कर दें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. 50% तो ऐसे हो गया. बट एक साफ सी बात है कृष्णा, अगर आपको अप टू 90% ऑफ चाहिए, बिना एफर्ट के नहीं मिलने वाला.
0: हाँ, तो बात ठीक है,
1: ठीक है ना, कोई भी चीज बिना एफर्ट के नहीं मिलती. जितने भी लिसनर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जो आए हैं, बिना एफर्ट के नहीं आए, कोई स्टूडेंट बन के आया है, कोई PR लेके आया है, एक बंदा मुझे बता दो जो एक दिन के एफर्ट के पीछे सब कुछ करके आ गया हो. राइट
0: जी,
1: इट टेक्स एफर्ट. तो अगर आप चाहते हो कि आपको 90% बिजनेस क्लास सिंगापुर एयरलाइंस की लेस में मिले, और आप ये भी चाहते हो कि एफर्ट भी ना हो, कैसे पॉसिबल है
0: इसमें कोई? बिकॉज द मोर एग्जांपल्स आई गेट, द मोर इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और लोगों के लिए भी उतने मेरे ख्याल से ईजी होगा. कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर समझा सकें, आपका पर्सनल हो या आपके किसी क्लाइंट की टेस्टिमनी के हिसाब से अगर हो.
1: सो अभी एक रिसेंटली मैं ग्रुप कोचिंग करता हूँ
0: जी,
1: राइट, आई डू 1-on-1 कोचिंग एंड आई डू ग्रुप कोचिंग. तो ग्रुप कोचिंग में अभी एक ग्रुप खत्म हुआ है, उसमें एक एशियन लेडी है, शी इज़ अ डॉक्टर यहाँ मेलबर्न में, नॉर्थ कट में. उनका अभी छोटा बच्चा है, टॉडलर, तो उनको सिंगापुर जाना था नेक्स्ट ईयर फरवरी में, बट उन्होंने नहीं बनाया प्लान बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू गो इन इकॉनमी. बिजनेस सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने कॉस्ट देखी 30 grand, उनका रहने देते, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. देन दे हर्ड अबाउट मी, उन्होंने मेरी ऐड देखी फेसबुक पे, बात करी, मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करी, देन दे ज्वाइन माई प्रोग्राम
0: जी.
1: ठीक है, अभी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी,
1: जस्ट ये स्ट्रेटजीज मैंने अभी शेयर करी हैं
0: जी,
1: सिर्फ ये करके लास्ट 2 months में उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि उन्होंने अपनी बिजनेस क्लास की टिकट्स खुद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और बेबी के लिए 3600 में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बुक करी है टू सिंगापुर रिटर्न.
0: अच्छा, वाह,
1: $3,600 AUD for 2 adults and a toddler return. आप बता दो कि it is a good deal or not?
0: It is a good deal. काफी good deal वैसे तो.
1: हाँ, अब ये जो लेडी हैं, ये थोड़ी सी analytical हैं. तो इन्होंने spreadsheet बनाई और देखा कि कितने घंटे लगे इनको ये सब कुछ करने में. 5 hours. ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी व्यूअर से, अगर ये टिकट, वैसे ये टिकट्स 15,000 की थी
0: जी,
1: इफ़ यू डिवाइड 15,000 बाई 5 hours कितना आता है?
0: 3,000।
1: हाँ अब आपके व्यूअर्स से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ योर व्यूअर्स वुड लाइक टू अर्न $3,000 पर आवर? सिंपल मैथ है ना
0: जी। इसमें एक अगर हम ये भी टेंटेटिव प्राइस बता सकें कि उसी सेम फ्लाइट में इकोनॉमी का अगर हम आइडिया लगाएं तो इकोनॉमी का क्या प्राइस रहा होगा?
1: इकोनॉमी तो कृष्णा और भी इजी हो जाएगी और भी सस्ती होगी। इकोनॉमी तो आई थिंक अभी पीछे फैमिली ऑफ सिक्स है तो एक ही प्लेन में 4 से ज़्यादा सीट्स मिलना मुश्किल होता है
0: जी
1: बिजनेस क्लास, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है एयरलाइंस पे कि वो कितनी रिलीज कर रही हैं। बट उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमी में भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी थी, उनको बस पैसे बचाने थे।
0: ओके
1: राइट, साफ सी बात है। तो दे वर वेरी ओपन अबाउट इट। अब उन्होंने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए कि $1,200 में फैमिली ऑफ सिक्स इज गोइंग टू इंडिया एंड कमिंग बैक।
0: वाओ,
1: फैमिली ऑफ सिक्स, क्योंकि बाकी उनके पॉइंट्स ऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक मतलब गिफ्ट कार्ड्स, अभी मैंने इंश्योरेंस की बात नहीं करी है, होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस,
0: ये सभी चाहिए हर कोई रह लेता।
1: कार किसके पास नहीं होती आजकल? प्राइवेट टैक्स किसको नहीं बचाना? राइट, कार, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, आपके पास घर है, कंटेंट और होम इंश्योरेंस चाहिए। देर आर सो मेनी कंपनीज गिविंग यू अप टू 100, अभी कॉन्टेस्ट की डील चल रही है राइट नाउ एज वी स्पीक, 2,00,000 पॉइंट दे रहे हैं वो।
0: अच्छा,
1: प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे अप टू 200,000। वैसे एक बिजनेस को $2,00,000 खर्चा करना पड़ता है टू अर्न 200,000 पॉइंट्स। अब कितनी फैमिलीज हैं जो महीने का 500, 600, 400 दे रही हैं बट कुछ मिल नहीं रहा, और अगर यही 600 दे के आपको 2,00,000 पॉइंट मिल रहे हैं 6 महीने में,
0: ह्यूज डील।
1: इट्स ह्यूज, ह्यूज।
0: और इसमें ये ज़्यादातर बिजनेस स्पेसिफिक रहती हैं ये डील्स वगैरह, कि अगर कोई कहते हैं नौकरी पेशे वाला कोई हो उसके लिए
1: कर सकते हैं, बट यू नीड अ फायर इन द बेली, लाइक एक बहुत ही जुनून चाहिए आपको करने के लिए। क्योंकि पहले पहले सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि एफर्ट लगेगा, कोई ईजी तरीका, तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढने में लग जाते हैं। राइट, बट अगर कोई भी बंदा या फैमिली 8 से 15 आवर्स अगर आप लगा सकते हो, मैं ओवर अ 6 मंथ पीरियड बोल रहा हूँ, इफ़ यू कैन डेडिकेट, क्योंकि कुछ टास्क में 5 मिनट लगेंगे, कुछ में 10 मिनट, कुछ में 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स टू अर्न पॉइंट्स कैन बी डन वाइल सिटिंग एट होम ऑनलाइन
0: एंड नो एक्स्ट्रा खर्चा।
1: ये
0: मेन है,
1: आई नो,
0: बाकी बात
1: आई नो, ये मेन है, बट ये मेन नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको बिजनेस में ट्रैवल करना है और आप ये बोलो कि मेरी इकोनॉमी की टिकट 2,000 की आती है, 1,800 में नहीं हो सकता।
0: हाँ ठीक है, राइट, मतलब कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली यू विल गेट अ रिटर्न।
1: लेकिन मेरे जो मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार अगर हमें 2,500 की जगह 3 भी देने पड़े लेकिन 10 ना देने पड़े।
0: हाँ वो तो, हाँ मतलब एवरीबडी लाइक्स अ गुड डील,
1: एवरीबडी वुड लाइक टू डू इट, राइट। इवन विदाउट डूइंग अ सर्वे, 90% ऑफ योर क्लाइंट जो आपके लिसनर्स हैं, अगर वो ये बात सुने तो 90% वुड पुट द हैंड अप एंड से ये मुझे 10 नहीं खर्च करने, लेकिन अगर 2 की जगह 2,200 या 2,500 या 3 खर्चने पड़े और बिजनेस क्लास मिल रही है, विच मीन्स लाउंज 40 किलो, हमें क्या चाहिए होता है? लोग वेट एडजस्ट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे। और एक और चीज़ है, जेट लैग। At least 5 families in the last 6 days have told me कि हॉलीडे से आए, बेटी बीमार हो गई, स्कूल नहीं गई, गैस घर पे कौन बैठा है? पेरेंट्स।
0: बिल्कुल सही।
1: और अगर बैठे हैं तो ख्याल किसको रखना है? पेरेंट्स को।
0: बिल्कुल।
1: तो वो प्रोडक्टिविटी कहाँ गई? पेरेंट्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी ना।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और जब वो बिजनेस में जाते हैं तो कोई जेट लैग नहीं होता।
0: ये वेट का तो बहुत इशू रहता
1: है, ठीक है ना।
0: पर्सनली बहुत रोता हूँ इस चीज को लेकर, तो आपकी बात तो सही है।
1: तो और प्रीमियम इकोनॉमी तो इतना आसान है कृष्णा, अगर आप बिजनेस को छोड़ भी दो, प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करना इज सो इजी फॉर अ फैमिली ऑफ 6, नॉट इवन 4।
0: अगर मैं इसे, सॉरी आपको टोका, अगर मैं इसे डाइसेक्ट कर दूं
1: जी,
0: मैं अगर पर पर्सन पर चलूं
1: जी,
0: तो अगर ऑन एन एवरेज मैं 80,000 पॉइंट कह लूं कि 80,000 पॉइंट में मेरे को वन वे की बिजनेस की टिकट मिल सकती है फॉर अ,
1: आप 1,00,000 ठीक, चलो मोटा मोटा,
0: चलो 1,00,000 पॉइंट में ठीक ठाक बढ़िया एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस टाइप पे, है ना, तो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी सेम उसी फ्लाइट की कितने पॉइंट्स में मिल जाती है?
1: So, पर हेड हम सिंगापुर एयरलाइंस की बात करें तो उनके जो फ्रीक्वेंट फ्लायर का नाम है वो है क्रिस फ्लायर
0: जी,
1: ठीक है, आपको 1,00,000 में अगर आप टाइम से करा लोगे तो 1,00,000 क्रिस फ्लायर में मेलबर्न दिल्ली मिल जाएगी
0: जी।
1: इकोनॉमी होगी आपकी, प्रीमियम इकोनॉमी होगी अराउंड 75 की,
0: ओके,
1: एग्जैक्ट तो मेरे को अभी नंबर नहीं पता,
0: बिजनेस
1: का मुझे पता, बिजनेस का मुझे पता बिकॉज आई डू इट एवरी डे। प्रीमियम इकोनॉमी होगी 70-80 के बीच में, 68 भी हो सकती है, अराउंड 70 लगा लेते हैं
0: जी।
1: और इकोनॉमी तो सिर्फ 50 में मिलती है। और एक और चीज आपके व्यूअर्स के लिए एक टॉप हैक बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट्स नहीं भी हैं लेकिन आपके पास वेलोसिटी के पॉइंट्स हैं वर्जन ऑस्ट्रेलिया के, तो भी आप सिंगापुर एयरलाइंस की प्रीमियम इकोनॉमी बुक कर सकते हो,
0: ओके,
1: एंड फॉर लेस पॉइंट्स देन सिंगापुर एयरलाइंस ओन प्रोग्राम,
0: ओके,
1: मतलब जो उनका खुद का प्रोग्राम है
0: अच्छा,
1: उससे सस्ते में, उससे कम पॉइंट्स में आप वेलोसिटी के पॉइंट यूज करके सिंगापुर उन्हीं का प्रोडक्ट में आप फ्लाई कर रहे हो,
0: ओके। अब इसमें एक और आ जाता है सवाल कि अब अगर मैं देखूं लोगों का जो इंटरेस्ट है, रुझान है, वो इस तरफ काफी जाना शुरू हो गया पॉइंट्स वगैरह
1: जी
0: इकट्ठे करने पे
1: जी।
0: तो ये कंपनीज, क्योंकि आप कह रहे हो आप यू बीन डूइंग दिस फॉर 12-13 इयर्स, है ना
1: जी,
0: तो ये कंपनीज इंसेंटिवाइज अब ज्यादा कर रही हैं पहले से कि कम कर रही हैं?
1: 100% ज्यादा कर रहे हैं। अभी मैंने आपको अच्छा बताया कि कॉन्टेस्ट 2,00,000 पॉइंट दे रही है,
0: तो बढ़ रहा है, मतलब
1: बढ़ रहा है,
0: ओके।
1: अभी AMP बैंक है, एक और चीज हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए, हमारे हम सेविंग्स में पैसा डालते हैं राइट, 4.25% इंटरेस्ट जो भी है
0: जी,
1: उससे क्योंकि उस पर टैक्स लगता है
0: जी।
1: आप अभी AMP बैंक की डील चल रही है, आपको वो 1 पॉइंट पर $10 दे रहे हैं टू हैव इट इन योर बैंक अकाउंट,
0: ओके।
1: बहुत लोग ऑफसेट में रखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत आपके व्यूअर्स होंगे जिनका 10-50-1,00,000 बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको अगर आप AMP बैंक में डाल दो तो आपको महीने के 10-50,000 पॉइंट तो सिर्फ उस खड़े पैसे के मिल रहे हैं, मतलब इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। आप एक बार सोच कर देखो, व्हाई विल अ बैंक डू दैट? ठीक है,
0: मैं इसमें ना बस ये आपने जितना बताया, थैंक यू वेरी मच, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या हो गया था लाइफ में
1: जी,
0: ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या घटना हो गई जो आपने इस तरफ रुख कर लिया
1: जी?
0: बिकॉज हैविंग सेड दैट, ये मैं आपने क्या बताना है, मैं ये बता दूं कि क्वांटस हो गए या वेलोसिटी वगैरह हो गया, या फिर इन्होंने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया, किसी बैंक कंपनी का नाम लिया, तो वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यू आर नॉट कमीशन्ड बाय देम,
1: नो,
0: आप उनके एजेंट नहीं है,
1: नहीं, मेरा कोई एफिलिएशन
0: नहीं है, एफिलिएशन किसी के साथ ऐसा नहीं है, सच नहीं है, ये आपने देखा खुद से किया और आपको लगा कि ये और लोग भी सीख सकते हैं, राइट? तो ये आपने जब देखा तो कब देखा और फिर कैसे ठीक किया?
1: ओके सर, 2 अगस्त 2013 को मुझे आज तक याद है, मैं लंदन गया था अपने भाई से मिलने के लिए
0: जी,
1: वो 2 साल के लिए लंदन गया था,
0: ओके,
1: तो उसने बुलाया मुझे, तो उस टाइम पे एक कार्ड हुआ करता था वेस्टपैक का, क्रिस फ्लायर कार्ड, जो अब नहीं है,
0: ओके,
1: ठीक है, वो लेगेसी कार्ड है, वो बंद कर दिया
0: जी।
1: उस टाइम मेरे पास 90,000 पॉइंट थे,
0: ओके।
1: अब एज यू डू, आजकल सोशल मीडिया पे आप बैठते हो, ये एक चीज दूसरी पे चली जाती है, दूसरी तीसरी पे चली जाती है
0: जी।
1: तो मैं बैठा बुक करने के लिए टिकट, तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड खोला, देखा ये 90,000 पॉइंट है। इससे पहले कि मुझे समझ में आता, मैं सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट के थ्रू मेलबर्न टू लंदन सिंगापुर एयरलाइंस बिजनेस क्लास $100 में बुक कर चुका था,
0: ओके।
1: जब मैंने उसका बाद में प्राइस देखा तो वो 6,500 की थी उस टाइम पे।
0: अच्छा, उसने खुद से अपने आप को वहां पर ट्रांसफर किया, ओके,
1: क्योंकि मैंने अपने लॉग इन किया अपने क्रेडिट कार्ड के पोर्टल में देखने के लिए कि भाई कितना बैलेंस है, क्या है, तो वहाँ पॉइंट्स लिखा आ रहा था 90,000। तो मैंने देखा कि क्रिस फ्लायर है, तो क्रिस फ्लायर तो सिंगापुर एयरलाइंस का प्रोग्राम है, देखा ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर साथ के साथ हो गए, हो गए तो वहाँ पे चीज लेके आ रही थी अवार्ड्स रिडीम, बटन दबाया, बैठे हो बटन दबाते हो, बटन दबाए तो डाला और टिकट आ गई अवेलेबल, 90,000 पॉइंट चाहिए थे, 90,000 थे
0: जी।
1: अब शुरू कैसे हुआ कि मैं चला तो गया बिजनेस क्लास में बड़ा खुश होके $100 में, लेकिन वापस आया इकोनॉमी में,
0: पॉइंट खत्म हो गए
1: पॉइंट ही नहीं अब आप खुद सोचो आप इतनी चौड़ी आपने देखी है सीट सिंगापुर एयरलाइंस की
0: जी जी जी
1: ठीक है
0: जी
1: इतनी चौड़ी होती है
0: जी
1: राइट और इकोनॉमी कितनी होती है
0: हाँ,
1: आपको ऐसे खाना पड़ता है
0: मेरा तो ज्यादा ही बुरा हाल होता है मैं तो घुटने
1: आप अपने टक ये हाँ
0: यस
1: आपके मोड़े टकरा रहे हैं साथ वाले के साथ
0: जी
1: ठीक है तो जब मैं वापस आया तो मैं लिटरली टीयर्स में था जैसे कहते हैं ना मैन टीयर्स लिटरली टीयर्स में था तो मैंने फिर सोच लिया कि बस अब मैंने कुछ करना है इसको पढ़ना है तो वो अगस्त 2013 से लेके अगस्त 2014 तक मेरी उस टाइम पे बहुत स्टेबल जॉब थी तो मैंने अपनी इवनिंग्स और वीकेंड्स इसको डेडिकेट किए
0: ओके
1: और फिर अगस्त 2014 से लेके आज तक मैंने फुल प्राइस नहीं पे किया बट बिजनेस मैंने 2021 में शुरू किया एक फ्रेंड की हेल्प करी तो उसने मुझे बोला कि यार तूने मेरे $20,000 बचा दिए 10 मिनट के अंदर उसके बस 1 million पॉइंट्स थे लेकिन उसको पता नहीं था करना क्या तो उसने कहा तू इस चीज दूसरों को सिखाता क्यों नहीं है एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड हेल्पिंग अदर बिजनेस ओनर्स
0: क्या बात है भाई रॉकस्टार में था टूटे दिल से ही म्यूजिक निकलता आपके ट्रॉमा से काफ़ी लोग सीख पाए हैं और सीख रहे हैं थैंक यू गगन जी शॉर्ट एंड क्रिस्प चैट करने के लिए हमारे साथ जाने से पहले एक क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट कह लें अपनी तरफ से या क्लोजिंग थॉट अपनी तरफ से और अपने सोशल्स और अपने वेबसाइट के बारे में बता दें हमारे व्यूवर्स को ताकि दे कैन कॉन्टैक्ट यू
1: जी पहली बात तो ये है कि देखो पैसा बचाना किसको नहीं अच्छा लगता
0: जी
1: और अच्छा लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए
0: जी
1: ठीक है मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स वुड बी between 30 and 60 years of age so they have lived their first half of their life aur logon ko hota hai ki yaar main apna second half to kam se kam thoda sa comfort mein bitaun to jab hum itne paise kharch kar rahe hain itni outgoings ja rahi hain agar ek tarika hai usko maximize karne ka bina paise kharch kiye abhi organic points ki baat ho rahi hai humne business ki baat to kari hi nahi zyada theek hai agar ek tarika hai to maximize it तो आप क्यों ना करो स्पेशली अगर आपकी फैमिली को या तो उसमें कंफर्ट मिल रहा है या पैसे बच रहे हैं ठीक है नाउ इन रिगार्ड्स टू गेटिंग इन टच विद मी जो भी आपके बिजनेस व्यूअर्स हैं जो खुद का बिजनेस रन करते हैं दे कैन गो ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे वो लिंक्डइन हो चाहे फेसबुक हो चाहे टिकटॉक हो या फिर इंस्टाग्राम हो एंड यूट्यूब ऑल दे हैव टू डू इज टाइप इन टर्न लेफ्ट फॉर लेस क्योंकि हम जब एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं तो हम राइट टर्न होते हैं टू इकोनॉमी वेयर डू वी टर्न लेफ्ट इनटू बिजनेस एंड फर्स्ट तो मेरे बिजनेस का नाम उसी से आया टर्न लेफ्ट फॉर लेस तो अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डाल देंगे तो हर पोस्ट में मेरा या तो लिंक होगा या वेबसाइट होगी और अगर आपके बिजनेस लिसनर्स मेरी मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं जो हर महीने होती हैं इस महीने वो 24th जून को है देन द वेबसाइट एड्रेस इज एल पी ठीक है एल फॉर लीमा पी फॉर पापा LP जैसे लैंडिंग पेज होता है ना lp.turnleftforless.com
0: जी
1: और लास्ट थिंग अगर किसी को डायरेक्ट ईमेल करनी है तो वो info@turnleftforless.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं कोई भी उनका क्वेश्चन हो आपके अगर वो रेडियो हांजी करके लिखेंगे आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन
0: इसलिए तो बुलाया कि जी रेडियो हांजी के हवाले से आप इनसे बात करें फ्री कंसल्टेशन ले एक बार और फिर बाद में जैसा आपका मन माने वन ऑन वन करनी है जी मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं ये था जी आज का सेगमेंट आपके लिए हम लेकर आए थे स्पेशली जानने के लिए कि भाई ये क्वांटस फ्लायर की दुनिया ये वेलोसिटी पॉइंट्स की दुनिया ये सब भी एक चलता हुआ एक पैरेलल सिस्टम है टू बुक योर फ्लाइट्स और पैसे बचाने के लिए पैसे खर्चा आजकल काफ़ी बढ़ भी गया है ये एपिसोड कैसा लगा और ये भी हमारे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि जब आप गगन जी से बात करें तो आपको कैसा लगा और आपकी लाइफ में कोई खास तब्दीली आई या नहीं आई कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए ये था हमारा प्यारा सा स्पेशल सेगमेंट मैं हूं कृष्णा टेक केयर बाय बाय देखते रहें सुनते रहें रेडियो हांजी 1674 AM

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
3: यार, उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
2: ओ हुण टेंशन नहीं, हुण डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपां बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी वी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45।

0: इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी रेडियो।
3: मेरे वालों तुहानू सारयां नू प्यार भरी सति श्री अकाल। हुण मैं जिहड़ा गीत पेश करन जा रही हाँ यह मेरे दिल दे बहुत करीब है। गीत दा नाम है पंजाबी मुटियारा ते उम्मीद करदी हाँ तुहानू पसंद आवेगा।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-97-33।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी रेडियो

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी।

अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सच्यार।

मन गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हासो कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सुपावा विन पाने के नाय करी जेती सृष्ट उफाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवे ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरै नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तर तवल आकाश सुनै दीप लोप पाताल सुनै पो न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर ब्रह्मा इंद सुनै मुख सलाहन मंद सुनै जो जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठ सठ का

सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावे राह, सुनै हाथ होए असगाह, नानक भगतां सदा विगाह। सुनै दुख पाप का नास, मन्ने की गत कई न जाय, जे को कह पिछे पछताय, कागत कलम न लिख।

जाने मन कोय, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल भवन की सुध, मनै मोचो टाने खा, मनै जम कै साथ न जाय, ऐसा नाम।

तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिनसूत जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सचे की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद मनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़िए बहुत अनूप, कां किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़िए सुरां सिदा की सुध।

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वी छपे संतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेक पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्रन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाजे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएक नमस्तं अनेक नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाये नमस्तं अभाये नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अभेशे नमस्तं नितामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदन्दे नमो सत्वन्दे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अवर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण गुरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदि श्रेतरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगाज कर्म के आभांज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिया के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन रजू है तमामल रजू है हमेशा सलामे सली खुदमदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आदरूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंद है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਗਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आदि कथनी।

अंठन अबार आडीठ तरम अतठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन संतो प्रसाद करना ले आर काले है कल खंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानिय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंभर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अभर्मं अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामं बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सोतर्मं प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीमं रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए सराव समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रहे मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे पारी पजान कपूर बली बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपत अंत को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे पूत पवेख पवान के पुपत कौन गने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्ज

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवतार इसार की तार बछैया तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बहु पुंज कपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बस

0: नहात फिरो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पुत्रो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो।

सब बैरन को आज संगरी है, पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो बर जाओ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियास तुझो करियो रच्छा। राख लियो मोए राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बपरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम। नंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा सुरु सुजंभव, आवरछा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुखद है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

तहि गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

माया अगन सावी को जई करता है खेल लचाया डांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हाँ।

तर सच है जिथे सदा सच तिहावे सचो तिहावे जा तुद बावे गुरमुख जिना बुझावे। ए सच सबना का खसम है जिस बक्से सोजन पावे कह नानक।

इंद्रे जित ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी हन, उन्हां दे कोलो वर दी प्राप्ति करो। जिवें आपां गुरबाणी दे विच पढ़दे हां, परत्रय रूप न पेखै नेत्र साध की टहल सा।

ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस। गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां हन, वड्डियां वड्डियां गल्लां दवानी दा बंदा भी कर सकदा है, पर संत होना कोई बच्चियां दी खेड नहीं। कोई करोड़ां दे विच इक अद्ध हुंदा है जिहदी इस तरह की अवस्था बनती है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आप सिफत की है, सूरज प्रकाश दे विच वचन आउंदे हन कि बाबा बुढ़ा साहब जी भरियां नूं खाली कर सकते हैं, खालियां नूं भर सकते हैं। सुके थावां दे विच जल भर सकते हैं, जिथे जल है उथे सुका थां कर सकते हैं। जीवदियां नूं मार सकते हैं, मरियां नूं जिंदा कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी दे विच इन्नी ताकत है, इन्नियां शक्तियां दे मालक हैं। जद माता जी पहली बार गए रास दे उपर सवार हो के, जो कश्मीर दियां संगतां ने भेटा कीता सी, बैत दा बनिया होया, अज ओ रथ साध संगत जी भाई रूपे है जिस रथ दे उपर माता जी गए सन, क्योंकि सीना मसीना गुरु घर दे विच रहा। इथे रस दे उपर ही सवार हो के बाबा राम राय जी दिल्ली विखे गए सन, जद बहुत सारियां करामातां विखाईयां। जद यही रथ दशमेश पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक पहुंचिया, तो सतगुरां ने वचन किया कि जिस तरह ओ रथ नूं बाबा राम राय जी बिना घोड़िया दे जोड़िया ही दिल्ली लै गए सन, जिहड़ा इस तरह ले जा सकता है तां लै जावे। ओ फिर साध संगत जी भाई रूपा जी दे परिवार विचों सन, गुरमुख प्यारे शक्तियां दे मालक सन। ओ रथ फिर भाई रूपे लै गए, अज भी भाई रूपे है ओ रथ। दूरों ही बाबा बुढ़ा साहब जी ने जद देखिया धूल उड़ रही सी, सुभाविक मुख दे विचों वचन निकलिया कि गुरु क्या नूं किधर भाजड़ा पै गईयां हन। जिस वक्त दासी ने बेनती कीती कि माता जी आए हन पुत्र दी जाचना करन वास्ते, बाबा बुढ़ा साहब जी आखन लगे कि मेरे कोल किथे इन्नी शक्ति है, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी तो आप शक्तियां दे मालक हन। कहण दा भाव के टाला कर गए। जद कोई ना कृपा करनी होवे ना, फिर महापुरख टाला कर जांदे हन। माता जी निराश हो के वापस आ गए, आके सारी गल दसी, नाले पुछया सतगुरां ने भी किस तरह गए सी। माता जी ने सारा दसिया। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने समझाया भी सत पुरशां दे कोल जाइए तां निम्रता दे नाल जाईदा है, तरीके दे नाल जाईदा है, जुगती दे नाल जाईदा है। फिर जिवें महाराज जी ने हुक्म कीता सी, अमृत वेले उठ के आप चक्की दे नाल आटा पीसिया है, अद्धा कणक दा और अद्धा छोलियां दा जो आटा वेसन है मिला के मिस्से प्रशादे तैयार कीते। हुक्म दे अनुसार साबत गंढे नाल लए और दही दी संघनी लस्सी बनाउणा कीती। सारा कुछ लै के नंगे पैरी माता गंगा जी गुरु के महल तों बीड़ साहब विखे चाला पाया, नाल दो सेवादारनियां सन, पिछों थोड़े जे गुरसिख नाल होर पिछे हो के चलदे सन।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਅੱਖੀ ਆਖੀ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਸੈ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਕੰਨ ਵਖਾਣੀ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲਿਸੈ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨ ਦਿਸੈ, ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ ਕਿਸੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਉਮਰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਤੇਜ ਬੱਦਲ ਗਰਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋ ਯੋਧਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਬਲ ਗੁਣ ਕਿਨੂ ਨਾ ਸੋਧਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ 1595 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਜਦ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇਹ, ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਹੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਉਦਰੇ ਮਹਿ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ, ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ,
प्रगटिया सब मैं लिखिया तुरका दसी मासी हुकम बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहिब कै मन पावे। ऐ गल है शुकराना किवें करना है गुरबाणी गा गा के सिमरन कर करके इस तरह शुकराना करना है। वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु देवाया भय अचिंत एक लिव लाया जो बालक पिता उपर करे बहुमान बुलाया बोले गुर कै भाण गुजी शनी नाही बात गुरु नानक तुठा कीनी दात। महाराज जी ने शुकराना कीता है। जद पृथ्वी चंद नू पता चलिया ओदियां सारियां उम्मीदां ते पानी फिर गया क्योंकि संसार दे लोग किसे दे दुख दे विचो अपना सुख पालदे हन जिहड़ा कि बिलकुल ही नामुमकिन है। इस तरह किवें हो सकता है किसे नू सुख दिओ तुहानू अपने आप ही मिल जावेगा। पर का बुरा न रखो चीत तुमको दुख नहीं भाई मीत। पृथ्वी चंद हमेशा यही सोचता है। एक चंदू का जिक्र आता है एक पृथ्वी चंद का आता है जेडे ना आप टिक के बैठते हैं ना किसी नू टिक के बैठन देंदे हैं। कहिंदे असी तां तड़फ रहे हाँ यह क्यों शांति दे नाल बैठे हैं इन्हां नू भी दुख देना चाहिदा है। पर उहदा भाई गुरदास साहब जी ने भी जिक्र किया है कि मीणा होवा पिरथिया कर कर टेढ़ बरल चलाया चंदन वास न वास बहाया। अंदरों कुछ होर है बाहरों कुछ होर है जिवें वास चंदन दे लागे रह के सुगंधी और सखना रह जांदा है। पृथ्वी चंद गुरु पुत्र है गुरु दा भरा है पर यह आत्म रस तो सखना है। साध संगत जी ए बैठा नहीं है टेक के इन्हें तीन जहरीले वार किते भी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं खत्म कर दिता जावे। सब तो पहला वार दाई नूं लालच दे के पैसे दे के उन्हें आख्या भी तू अपने अस्त्रां दे नाल जहर लगा के बालक हरगोबिंद साहब महाराज जी दे मुख दे विच पा देवी आपे जहर चढ़न दे नाल खत्म हो जाणगे। जद उन्हें इस तरह करन दी कोशिश कीती दाई आप ही जहर दे नाल तड़फ तड़फ के मर गई। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं तत्ती वा न लगी। दूसरा साध संगत जी इस ने एक सपेरे नूं भेजिया जोगी नूं घर दे विच सप छड्डिया गुरु की वडाली विखे वह भी सतगुरां ने पटक पटक के खत्म कर दिता मार दिता। तीसरा एक ब्राह्मण नूं लालच दे के भी 500 पहला देने हां 500 काम होने तो बाद विच दवांगे। लालच दे के आख्या भी दही दे विच जहर मिला के बालक हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं छका दवें। जद उन्हें बड़ी कोशिश की सतगुरां ने ना छकिया उस वक्त साध संगत जी जिवें इतिहासकारां ने जिक्र किया है भी घर दे विच एक कूकर सी सतगुरां ने दही उन्हूं छका के उहदी कल्याण कर दित्ती। और ये जिहड़ा ब्राह्मण सी पेट दे विच बड़ी बुरी तरह दे नाल दर्द दे नाल तड़फ तड़फ के इन्हें अपनी जान दे दिती मरदा मरदा सारा दस गया भी सारा कुछ पृथ्वी चंद दा कीता कराया होया है। महाराज जी ने उस संबंध विच भी गुरबाणी दे विच शब्द उचारण किया है लेप न लागो तिल का मूल दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सोल।
ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹਨ। ਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਚਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ

सदा वास्ते सहायक बन गए। और कहिंदे जिहड़ा अंदर दुखां ने अपना झंडा गड़िया होया सी ना, दुखां दा झंडा झुल रहा सी, ओह कहिंदे परमेश्वर ने कट दिता है। जिहदा राज होवे ना उहदा झंडा झुलदा है। आदि काल तो ही फौजां आपस दे विच लड़दियां आईयां हन, सब दे कोल अपना अपना झंडा हुंदा है। जद किते जित प्राप्त कर ली जावे फिर दुश्मन दा झंडा कट दिता जांदा है, अपना झंडा गड़ दिता जांदा है। ये गल हुंदी है जिवें देशां दे वखरे वखरे झंडे हन, वखरे वखरे निशान हन। कनेडा दा अलग है, अमेरिका दा अलग है, इंग्लैंड दा अलग है, हिंदुस्तान दा अलग है। खालसा एक

परमेश्वर ने हुण कट दिता है। हुण अंदर सुख दा, आनंद दा, शांति दा झंडा जिहड़ा है ना।

अपना हाथ दे के आप ही बचा लिया, रख्या कीती। एक शरीरक रूप दे विच भी रख्या हुंदी है, एक आत्मक तौर ते असूलां दे तौर ते रख्या कीती जांदी है। बहुत सारे ऐसे इतिहासक प्रमाण हन जदों संसारी कारां विहारां दे विच भी सतगुरु जी अपने सिख दी रख्या करदे हन, हाथ दे के हाजिर हो जांदे हन। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावै, सेवक को निकटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पह सेवक तत्काल होए आवे। जे भाई कटारू जी ने बेनती कीती, महाराज मेरा काम कार देख के, मेरी चढ़दी कला देख के ए निंदक लोग बड़ी ईरखा कर रहे हन, अरदास कीती मेरे वटे बदल दिते हन, हेरा फेरी कर दिती है, नाल ही शिकायत भी कर दिती है, क्योंकि दुश्मन बात करे अणहोई वो तो मौका ताड़दा है। साध संगत जी उस वक्त जद वटे चेक कीते, हाकम ने इधर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे चरणा दे विच किसे प्रेमी ने पांच पैसे भेटा कीते। महाराज पांच पैसिया नू कबे कदे खबे हाथ दी तली ते रख दे हन, कदे सजे दी दे। प्रेमिया ने बेनती कीती, महाराज की कौतक है? महाराज आखण लगे, असीं सिख दे वटियां दा वजन पूरा कर रहे हां, जिथे जिथे भी सिख होवे। दूसरा भाई त्रिलोके दा जिक्र आउंदा है, शिकायत हो गई भाई त्रिलोका जी विराग दी अवस्था दे विच रहिंदे हन, लकड़ दी कृपा नूं रखदे हन। जद शिकायत गई बेनती कीती महाराज दे चरणा दे विच, जद म्यान दे विच लकड़ दी कृपान कढ़ी तां कहिंदे इस तरह सी जिवें हलब्बी कृपान होवे, जनब्बी कृपान होवे, बड़ी लिशक मारी उहने, महाराज ने रख्या कीती। मक्खण शाह लुबाणे दी महाराज ने उड़ा बेड़ा बन्ने ला के रख्या कीती, अनेका प्रमाण हन। दूसरा हुंदा है साध संगत जी असूलां दी रख्या करनी, जिस तरह भाई मनी सिंह ने अपने बंद बंद कटवा ले, एह बेनती कीती महाराज शरीर दी परवाह नहीं, शरीर तां एक दिन बिनसना ही है, जो उपजो सो बिन सह परो आज कै काल, पर जो धर्म कमावे उसे तिस धर्म ना होवै, पाप कमाने पापी जानिए। जिहड़ा धर्म दा जीवन जी के मरेगा उन संसार दे विच धर्मी दे नाम दे नाल जानिया जावेगा, पुकारिया जावेगा। जिहड़ा पाप करदा होया मर जावेगा, मरन तो बाद भी उन्हें लोग पापी आखणगे। बेनती कीती भाई तारू सिंह जी ने, बेनती कीती परवाह नहीं है सिर दी, उन्होंने केड़ी बेनती कीती, शरीर तां बिनसना ही बिनसना है, मेरे असूल नहीं मरने चाहिए हन, मेरा सिदक नहीं जाना चाहिदा है,

सुंदर गहरी विचार आपां नूं समझा रहे हन। कहिंदे नाम जपण वाले जो रब दे प्यारे हन, भावे उन्हां दे कोल पाउण वास्ते कपड़ा ना होवे, भावे नंगे होण, सौ तरह दे नाल नंगे होण, कोई कपड़ा ना उन्हां नूं प्राप्त होवे, पर कहिंदे जेकर उन्हां दे कोल प्रेम दा कपड़ा है ना, उन्हां नूं मिल गया है, ओह फिर नंगे नहीं हुंदे हन।

पर फिर भी उन्होंने कोई परवाह नहीं होया करती है। इन्हें सेवा चल रही है, सिमरन चल रहा है, होर की चाहिदा है। वो भुख की परवाह

सौ तरह का नंग उन्हां नूं महसूस नहीं हुंदा, लख तरह की भुख उन्हां नूं महसूस नहीं हुंदी, करोड़ां तरह के दुख होण लंघ जांदे हन दुखां दे विच वी, ओह परवाह नहीं मनदे हन, सीने खिच जिन्हां ने खादे ओह कर आराम नहीं बहिंदे, न्यो वाले नैणा की नींदर रात दिने रात पए वहिंदे, इको लगन लगी नहीं जाए टोर अनंत उन्हां दे, वसलो उरे मुकाम ना कोई चाल पए नित रहिंदे, करोड़ा तरह दे दुख होण ओह परवाह नहीं करदे हन, मनदे नहीं हन, क्योंकि ओह प्यारा वाहिगुरु परमेश्वर जेकर अपने प्यारियां दे उपर किरपा करे

क्योंकि ओदे कोल परमेश्वर दा नाम नहीं है। जैत श्री दी वार दे विच वी महाराज ने यह वचन फरमाए हन, बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात न पत न आदरो ध्यान परमिन्ना, मित्र न इठ तन रूपहीन किस साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना, तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना। ओ ता कहिंदे सारी सृष्टि दा राजा है जेड़ा नाम जपदा है। दूसरा नुक्ता विद्वान महापुरख दस्या करदे हन, जेकर घर दे विच धन भी होवे नाम भी होवे फिर तां क्या ही कहने हन, फिर तां बड़ी वड्डी गल होया करदी है, पर घट ही इस तरह हुंदा है। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, ग्रह सोइन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख माणदा किस नाहे विसूरे, सो प्रभ चेतना आवे बिष्टा के कीरे, बिन हर नाम न शांत होए कित बिद मन धीरे। महाराज कहिंदे सारे सुख होण सुंदर महल होण, पर जेकर अमृत वेले उठ के नितनेम ही नहीं करदा, अमृत वेले उठ के नाम ही नहीं जपदा, बाणी ही नहीं पढ़दा, असूलां नूं ही नहीं धारण करदा, तां साध संगत जी सारा कुछ ओहदे वास्ते फिर रोग बन जांदा है।

सुंदर नुकता महाराज जी समझा रहे हैं पंजवें पातशाह। महाराज समझाउंदे हन कि हे भाई तू एक वाहिगुरु परमेश्वर नूं ही चाहिया कर, लोड़िया कर, एक नूं मंगिया कर, अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल ही जुड़िया कर, पछाणो भी एक कर। बहुत सुंदर विचार है। कहिंदे जे जान पछाण बनाउणी है ना तां इक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल बना। आपां देखदे आ ना समाज दे विच, आपां कहिंदे जी लो जी मेरी फलाणे अफसर दे नाल गलबात, मेरी जान पछाण है जी उहदे नाल, फलाणे मंत्री दे नाल जान पछाण है जी, फलाणे अफसर दे नाल जान पछाण है जी। जदों लोड़ पई पता नहीं उन्हें टेलीफोन भी चुकना है कि नहीं चुकना। जेकर जान पछाण बनानेगा वड्डे नाल, गुरु रामदास दे नाल, परमेश्वर दे नाल, फिर खेड कुछ होर ही बन जाती है। ये नुकता महाराज सानू समझा रहे हैं। वो जान पछाण बनती है सिमरन करके, बाणी पढ़ के, सेवा करके, नाम जप के, फिर परमेश्वर दे नाल जान पछाण हुंदी है। पछाणो भी एक कर, इको वाहिगुरु परमेश्वर दे नाल जान पछाण बना ला। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वाद, एक नू सज्जन बनावेगा तेरे सारे सज्जन बन जाणगे। जे एक दे नाल दुश्मनी कर लेगा जिन्ने मर्जी तू पापड़ वेल ले, सारे तेरे दुश्मन बन जाणगे। ये महाराज जी सानू नुकता

0: धर्म जो है वो भी निःचल है, सदा कायम रहण वाला है। रब दे प्यारे दिने रात परमेश्वर दी आराधना करदे हन।
1: दया धर्म तप निःचलो जिस कर्म लिखादा।
0: दया धर्म तप शुभ गुण जेडे हन ए भी निःचल हन, जेदे नाल मनुख दे कर्म बनदे हन, चंगे कर्म लिखे जांदे हन। जेकर चंगे कर्म करांगे तां
1: निःचल मस्तक लेख लिखिया सो टला ना टलादा।
0: कर्म दे हिसाब दे नाल फिर मनुख दे मथे दे उपर लेख लिखे जांदे हन, जेड़ा फिर लिखिया जांदा है ओ फिर टलदा नहीं है, ओ हो के रहिंदा। जे चंगे कर्म कीते चंगा फल मिल जांदा है, माड़िया दा माड़ा।
1: निःचल संगत साध जान बचन निःचल गुर साधा।
0: जो गुरु दी संगत है ओ भी निःचल है, सदा वास्ते कायम रहण वाली है। अते साधुआं दे बचन जेड़े हन ओ भी निःचल हन, ओना किसे तरह दे नाल टालिया नहीं जा सकदा। सदा वास्ते ही गुरु दे बचन अटल हन, सदा

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो प्रतिदिन अध्यात्म के सागर से ज्ञान के मोती चुनकर आपके जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने का प्रयास करता है। मित्रों, आपने कभी ना कभी धोखा खाया होगा या कभी अपने आप को ठगा सा महसूस किया होगा। किसी को भी धोखा देना आजकल आम सी बात हो गई है। मानो हम जाने अनजाने में डेली लाइफ में ना जाने कितनी बार कितनों को धोखा दे रहे हैं, हमें स्वयं भी नहीं पता चलता। अभी आया बस 5 मिनट में, ये बोलकर घंटों में पहुंचना, ये भी धोखे की कैटेगरी में आता है। बड़े धोखे की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, जिसमें ये गुण आ जाते हैं उनके साथ क्या होता है, जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप अपने दास के साथ, जो कभी धोखा नहीं देगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि शास्त्रों में लिखा है धोखा देना और दूसरों को ठगना मनुष्य के चरित्र को नष्ट कर देता है। आज के समय में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि हमने किसी को धोखा देकर अपना लाभ कर लिया, किसी का विश्वास तोड़ दिया, किसी को छल लिया, ठग लिया, तो हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। किंतु सच्चाई यह है कि धोखे से कमाया हुआ लाभ कुछ समय का ही हो सकता है, किंतु उससे होने वाली चरित्र की हानि जीवन भर साथ रहती है। मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। अधिकांश धोखे और छल की शुरुआत लोभ से ही होती है। अधिक धन, अधिक लाभ या अपना स्वार्थ की इच्छा मनुष्य को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, जिससे उनका चरित्र धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। श्रीमद् भागवतम में अनेक असुरों का वर्णन आता है, जिन्होंने छल और कपट का मार्ग अपनाया। कंस ने छल से अपनी बहन देवकी और वसुदेव को बंदी बनाया। उसने अपने स्वार्थ और भय के कारण अनेक निर्दोष बच्चों की हत्या करवाई। कुछ समय तक तो वह शक्तिशाली दिखाई दिया, किंतु अंत में उसका विनाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों से हुआ। इससे यही शिक्षा मिलती है कि छल और धोखे से प्राप्त सत्ता या सफलता परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती। इस पर कीजिए चिंतन। मैं यूं गया यूं आया।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तो हाड़ी गड़ी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाड़ी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
2: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो हमें छल या धोखा देने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। एक व्यापारी था, अपने ग्राहकों को कम तोलकर सामान देता था। वह सोचता था कि थोड़ी थोड़ी बेईमानी से वह जल्दी अमीर बन जाएगा। कुछ वर्षों तक उसका व्यापार बढ़ता रहा, किंतु धीरे धीरे लोगों को उसकी सच्चाई पता चलती गई। ग्राहक उससे दूर होने लगे, उसकी दुकान खाली रहने लगी। एक दिन उसके पुत्र ने पूछा, पिताजी हमारा व्यापार क्यों समाप्त हो गया? व्यापारी ने कहा, मैंने धन कमाने के लिए लोगों का विश्वास खो दिया, और जब विश्वास चला जाता है तो व्यापार, सम्मान और संबंध सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में दैवी और असुरों गुणों को इस तरह बताते हैं कि दंभ, घमंड, छल, क्रोध और कठोरता, ये सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं। जो व्यक्ति दूसरों को ठगता है, वह केवल सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई, सत्य और चरित्र को भी नष्ट कर देता है। मित्रों, धन दोबारा कमाया जा सकता है, व्यापार दोबारा बनाया जा सकता है, किंतु एक बार चरित्र पर लगा धोखे का दाग आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। लोग उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। परिवार, मित्र और समाज में उसका सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हमें दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें लोभ, छल और कपट से दूर रखें, तथा सत्य, ईमानदारी और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria apply. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
1: सोना चाहिदा
2: भरोसा चाहिदा
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
3: रोज

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: भैन जी की हाल है पिट दर्द दा?
2: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।